सतगुर होए दयाल तसरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कबहू झूरी है, सतगुर होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके AM 530 तो प्रभ संत दे नाल।

0: टीका टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दियां ते मसलियां ते
1: तिरछी नजर रवेगी, कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: चहबर लगेगी नवे पुराने गीता दी,
1: बातां होणगियां सभ्याचार ते अमीर विरसे दियां।
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार।
1: बिजनेस दी प्रमोशन ली आज ही कॉल करो 416-917-7073 416-917-7763।

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरूआं नूं
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे 7 दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.

0: ब्रिजी बिलाल, ब्रिजी कैसे हैं आप? चढ़दीकला
1: चढ़दीकला जी, ऑल ग्रेट।
0: ओके ब्रिजी, अज दा मैसेज देने आप सारयां नूं, जिथे तुसी अपनी बॉडी अपने शरीर की सेवा करवानी है, वह सेवा ब्रिजी करता है। $55 लगते हैं, बिचे का तेल हों, बिचे जगह होंगी है, टॉवल्स होंगे ने, इलैक्ट्रिसिटी बिल, आपकी सैलरी, किराए सब होंगे ने, बड़ी रीजनेबल कीमत देते थोड़ी सेवा करता। जिन्हें जिन्हें सेवा करवानी है, मुरथल वाले भलवाना मंगों की यह मालिश करता, बट कर दिता, बख्शा इस बंदे पेशे तो ये डिप्लो जे अपने सॉरी दूसरे। आप क्या आपका एजुकेशन क्या था ब्रिजी?
1: जी मैम नॉटिकल इंजीनियरिंग की है जी।
0: हाँ इंजीनियर सिगा ते फिर शेफ भी रहा, पर आ जरा काम है ना यू बख्श हैगी है। तुसी कोई भी किसी के दर्द हैगा इस व्यक्ति नू कॉल करो, थोड़ा दर्द दूर कर दूगा, थोड़ी बॉडी नू आदत पै जानी है ब्रिजी को बार बार जान दी, क्योंकि सुख मिलना तुहानू। ब्रिजी नंबर दो 647-619-1369 ब्रिजी नू कॉल करो, अपियंगम शिरोधारा ते नाल नाल तुहानू जिहड़ा हैगा आपके पास तेल कौन सा होता है?
1: हमारे साथ मुरुवन्ना, शेरबला, धनोंदरम, ऑल काइंड्स ऑफ आयुर्वेदिक तेल है जी हमारे।
0: हाँ सो आयुर्वेदिक है, माल्टन गुरुद्वारे के कोल है, स्लो रोड के नाल, ते तुसी 647-619-1369 647-619-1369 ब्रिजी एक नंबर लो अच्छा सा, जो ना लोगों को याद रहे। आपका नंबर ना लोग मांगते बहुत हैं।
1: आपने
0: जैसे हमारे पास नहीं 416-518-3200, संतोष के पास है 416-473-4242, याद हो गया ना? ऐसा नंबर लीजिए 647-619-1369 पे कॉल करो सारे, 647-619-1369। बीजी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच,
1: बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू।

0: 818-2200।
1: ऑटो ओनर्स, क्या आप ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं या फिर नया ड्राइवर ऐड करने के बाद आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़ गया है? अगर आपके पास जी या G2 लाइसेंस है और कनाडा में 3 सालों का इंश्योरेंस एक्सपीरियंस है तो टेंशन मत लीजिए।
2: ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया को आज ही कॉल करें, जो आपको अच्छा प्रीमियम, ऑनेस्ट एडवाइस और ग्रेट सर्विस भी देंगे। अपनी होम और ऑटो इंश्योरेंस का पैकेज बनवाएं और अप टू 30% तक बचाएं। ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया 6476562810, दैट इज 6476562810।
3: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है, ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने, कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती हैं। पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस दे ले लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तुहानू डेट नू प्रॉपरली असेस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने। इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो। ज्यादा इंफॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200।
4: पापा, सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
5: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
6: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो,
7: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।
8: आप सब दा एक बार फिर तो स्वागत करते हैं, तो 9:28 स्टूडियो खड़े थे। संतोष जी की हाल चाल ने? जी संतोष जी, सत श्री अकाल, की हाल चाल ने?
9: जी बहुत वधिया, सत श्री अकाल सारे रेडियो लिसनर्स नू। अमन जी, मैनू बहुत हास्ता,
8: मैनू पता तुहाडा कुछ ना कुछ पंगा पै जांदा हैगा।
9: जी अमन जी, मैनू गुस्सा भी आ रहा है, मैनू हास्ता भी आ रहा है।
8: मैं देख लिया जी तुहाडा जी सारा सिस्टम देख लिया जी।
9: सोल्यूशन चाहिदा मैनू,
8: सोल्यूशन चाहिदा तुहानू। संतोष दा इक दा पंगा पै रहिंदा ते तुहाडे बिना दा कोई गुजारा भी है नहीं गा।
9: बिलकुल
8: नहीं हैगा ना?
9: बिलकुल बिलकुल।
8: संतोष ने जदों मैनू इह मैसेज रात भेजिया, मैं पढ़ के हसया बहुत। सवाल की बना दस्यो तुहाडा की अज।
9: अमन जी, मेनू ना किसी रिश्तेदार दे घर इनविटेशन आया ब्याह दा, बट इनविटेशन किवें आया उन्होंने जस्ट ओह
8: बहुत बहुत मुबारकां तुहानू, किसी ने बुलाया तुसी सब तां बुलाउंदे नहीं लोक।
9: नहीं नहीं, बुलाया भी किवें अमन जी, आ देखो थप्पड़ ही लगाया उन्होंने, व्हाट्सएप ते कार्ड बना के भेज दिता, एक फोन भी नहीं किया, ते 2 दिन बाद ब्याह आया। मेरे हसबेंड कहंदे जाना, मैं कहंदी नहीं जाना। हुण तुसी सोल्यूशन दो, मैनू जाना चाहिदा कि नहीं, क्योंकि मैनू कोई फोन तक नहीं किया रिश्तेदारा ने,
8: भेज के ब्याह बारे दसता भी इन्नी तरीक इन्ने बजे आ वाली जगह पहुंच जाना, कोई किसी का फोन नहीं आया, ब्याह बिलकुल नेड़े आ चुका है, बिलकुल ही नेड़े। संतोष कहती भी यह मेरी सैल्फ रिस्पैक्ट है, पर फैमिली कहती है भी ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
9: ਜੀ,
8: ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਓ,
9: ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨਾ ਅਮਨ ਜੀ
8: ਵਟਸਐਪ ਤੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੈਨਾ?
9: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ
8: ਚਲੋ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੈਨਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ
9: ਜੀ
8: ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਨਾ?
9: ਜੀ ਜੀ।
8: ਹੁਣ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ
9: ਜੀ,
8: ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
9: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
8: ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨੀਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? 905-673-3337 ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 9056733333

का मेडिकल इंश्योरेंस नंबर है जी 416-817-6500। दिस इज हरप्रीत सैनी, चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड सर्टिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी।

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 square feet दी कॉटेज सेल ते आई है। 3 bedroom, 2.5 washroom हैं। हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है। $30,000 दा जेनरेटर अते 14 by 14 feet दा पैड भी बनया है। 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जेनरेट कर दी है। 12 by 30 feet दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है। पिछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा। बीच भी नजदीक है। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222 bye bye

0: एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रामटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल आले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड। 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
3: విమలా విలేజిలా విలేజ్ పడది పీయొచ్చ జంట పడదా, విమలా విలేజిలా విలేజ్, విమలా విలేజిలా విలేజ్ పడది। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਤਨੋ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਖੀ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।

0: और थाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कोई भी कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर, रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस, जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर। टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ, कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल, सेफ्टी सर्टिफिकेशन ऊबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है, स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च, स्टील्स एंड मेलनी, रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1
3: CHLO AM, an Evanoff communications station, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
4: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.